काल का की आत्माशा। जमन काल जोगी सब कियो, वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो। जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। याद अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन कौ सब गुण सुख दियो, सतरन कौ पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जा बुद करख करा करतारा, पर जा तरत तब दे हो अपारा। जब या करख करत हो कबहू, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अरे आलम।

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को वाक तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक ना जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तोहे बखाने दोहरा

गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया।

शक्ति और निराकार जिसने यह सारा आकार लिया हुआ है, बड़े ही प्यारे वचन श्रवण करोगे, ध्यान देवांगे, ते थोड़ा हृदय की वेदना, हृदय का प्यार लगाओ इस बाणी नाल, और भी आनंद आएगा। उच्चियां अवस्थावां दी वचन हन, जिस किसी नूं ऐसा नजर आंदा होवे, जदों गुरु नानक कहणगे जह जह देखा तह जोत तुम्हारी, जिस नूं किसी नूं गुरमुख वड़पागे प्यारे नूं दिसदी होवेगी ओह जोत, ओथे खिल उठ गया, ओथे खिले ही होया है, उसकी खबर मिलती है कि वह है साढ़े, असी उसे दा ही रूप हाँ, सो प्रभ दूर नहीं प्रभ तू है। इसनू आओ प्यार नाल गाइए, हृदय दे विचों हृदय की उमंग, हृदय हृदय की पीड़ा, हृदय के प्यार नाल दिलों गाइए, तेरे जोज बिदाना मेरे साहिबा, तेरे अचरज कौतक हैं, तू हर जल ते थल ते आकाश हर पासे भरपूर हैं, किते भी कमी नहीं, हर पासे भरिया पिया है, भरिया पिया है, आपे ही समा रहा है। इसमें कोशिश करिए, सानू भी पता चलेगा कि किन्ने आप संतान इसनू प्यार नाल गाना चाहते हो। एक दो बार आप जी ने मैं बेनती करा, एक बार दस रहे दो बार बोल दें, जे तेरे चोज बिदाना मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, अगेन मेरे तेरे चोज बिदाना मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, इस तरह गा के असं जो छड़ांगे तो इन्नी जिहड़ा ये हिस्सा है म्यूजिक के तौर पर, इस दे विच मेरिया बच्चिया, मेरिया भैन, मेरिया माव, उन्हां दी जिहड़ी सुर है उन्हां दे उन्हां नूं माफ़ होंदी है, उन्हां दे उत्ते सहजे ही सुर लग सकेगा। सिर्फ जदों कहना ना मेरे साहिबा थोड़ा जा उच्ची कहना, बाकी तुसीं समझ गए होवोगे मेरा की मतलब है। दो बार दस रहे बोलणगे तो जिस तरह मेरे साइड ते सिंह उच्ची बोलणगे, इदा जिहड़े वीरां दे विच समर्था है, एबिलिटी है, वो उच्ची भी गा सकदे हैं। गा के मैनूं दस नूं भी सानूं भी अंदाजा होएगा कि असीं उस तरह गाउणा है जां तुसीं बस थोड़े थोड़े जिहे ल्यूक वॉर्म जे हल्के हल्के जे गाओगे तो कोई स्वाद वाली गल नहीं, फिर असी अपना ही बिजनेस माइंड करांगे, असी अपना आनंद लवांगे। तो दो बार देखते हैं

सारे बचन आपने सर्वन किते हैं, असर विच दास नू किसे ने ए असीसां भेजियां कि ऐसे रवो कली काया। इस तरह नवे साल दे अपना बेस्ट विशेष भेजते हैं, फिर मन विच आया क्यों ना आप सारी संगत नाल शेयर करिए, ऐसे ही काया रवे ते काल कदे। काल का मतलब है समा, समा सबनों खा जाता है, पर ऐसी अवस्था विच पहुँचते हैं गुरु के से साधक जो भी स्पिरिचुअली जो प्रैक्टिस करते हैं, वो ऐसी अवस्था विच पहुँचते हैं जिन्हों के उत्ते समय का फिर असर नहीं होता। अकाल जिस तरह अकाल पुरख है, उस दे नाल मिल के वो भी अकाल हो जाते हैं गुरु लोग। ऐसी असीस ऐसियाँ विशेष कोई बंदे के मन चाहिए, तो ऐसी विश बहुत प्यारी है कि ऐसा ताड़ा बने, काया भी ताड़ी कंचन की तरह बन जाए कि उस काया विच रहते हुए भी किसी अकाल रूप नाल अकाल भी हो जाए। शरीर मिट जाएगा समय अनुसार, पर किसी अमिट हो जाओगे, अमर हो जाओगे। अमर का मतलब की होंगे, विष्णु साहब ने कहा अमृत पीवे अमर सो हो। अमर दे जो असी दो करिए, ऐड़े नू वखरा करिए तो दूसरे पासे रह जाता मर, तो अ का मतलब होंगे मरण तो मृत्यु तो रह, अमर अमर हो जाता है, उसकी मृत्यु नहीं होंगी। और शरीर नू भी जो शरीर आत्मा तो अलग होंगे, उसनों वेखण वाला बन जाता है, ऐसी अवस्था का वर्णन सारी कहते हैं। सो असी भी पहली बार वरीत जो पढ़ रहे हैं, सारे कृपा करो अगर किसी सारे दे पकड़ जावे। दो बार बोल के वेखते हैं इस तरह लगता है कि सदा है कंचन सी काया, काल न कभी व्यापे, ऐसा शब्द है। आत्म उपदेश वाला जो भाग है वो हिस्सा भी सारे की पकड़ जाने वाला है, स्पेशली मेरिया मावा भैन बच्चिया के हिस्से आएगा, वीर भी आएगा। आत्म उपदेश तेस संजम को जाप सो अजप्पा जापा, जो अजप्पा जाप विच पहुँचते हैं। अजप्पा का मतलब तो सिंपली लगता ऐसा, किसी के मतभेद हो सकते हैं कुछ बुद्धि अनुसार कि जड़ा बिना जपया ही चलते ही रहे वो याद बनी रहे, वो ऐसे बंदे की काया कंचन वर्गी होंगी है, तो काल तो रहत हो जाता है। ऐसिया असीसा ऐसी विशेष किसी ने विश करना बहुत ही अमोलक है, बहुत ही प्यारी है, इट्स वर्थ इट। सो आओ कृपा करो, असी बोलते हाँ सारे जो स्टेज पर बैठे हाँ, फिर असी चुप कर देंगे, साजां दी आवाज़ थोड़ी जी लो कर देंगे, सारे कृपा करना बोलना।

अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसिय गुरु मल जन्म जन्म दी कटी है सजना सचा पात साहु जिस पास बैठिया सोही है सब ना दावे साहु सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ओ श्लोक महला तीजा

अपंगं बेपुते। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु साहिब जी गुरु गरीब निवाज। एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसमी त्वै प्रसाद स्वये श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के देख फिर कर जोग जति के सुर सुरार्दन शुद्ध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखिए प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिनु एक रति के मत मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूद पौन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूपली बिद न्याप शीस ना जात बिचारे ते भय तो कह पै भूपत अंत काओ नंगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गिजान के सुंदर हिंसती है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बेचारे श्री पद श्री भगवान भजे बिने अंत काओ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नाम दया दमदान सुसंजम नेम अनेक विशेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेखा है पौन आहार जति जत धार सब सो विचार हजार क देखा है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिनु एक ना लेखा है शुद्ध सपाह दुरंत दुबहा सुसास नह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान पर एक मन मै कर पर्वत पंखा ले नहा लेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की तार पशैया तोर देश मिलन मवासन माते के जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सो बात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाच अनेक सो एक देवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भवेक भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जाय तुन पापन के बपुंज खपेंगे सास मुह प्रसन्न फिर जग सतर सबैव लोक चपेंगे मान इंद्र गजेंद्र नरा तप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजान गदान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पति अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पद के प्रस है पग ते नर फेर न दे तरेंगे कहा पहयो जो दो लोचन मूंद का बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो नाथ फिर लिए सात समुद्र लोग गए ऊपर लोग वायु बास की उबखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लिहो सब जिन प्रेम की उतनी ही प्रपायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग करे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पिशाह को शीस निवायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तहायो कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु साहिब जी गुरु गरीब निवाज। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसमी कभी उबाच बेनती चाओ पई
हमरी करू हादर अच्छा पूर्ण हुई चित की इच्छा तब चनन मन रहे हमारा अपना जान करू प्रतारा हमरे दुष्ट सबै तुमका वहो आफा दै मोहि बचा वहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर छन कर दे करिए सब बैरन कहो आ संघरिये पूर्ण होए हमारी आसा तुर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊं जो मरचा हूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारी तारिया चुन चुन सत्र हमारी मारिया आफा दे मुझे उबरिया मरन काल का त्रास निवरिया हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जु करियो रच्छा श्री अस्तु जु करियो रक्षा राख लियो मेरा खनहारे साहिब संसहाए प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो प्री चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तुमा सा जवन काल जोगी शिव कियो बेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोग सुवार नमस्कार रहता है हमारा जवन काल सब जग बनायो देव दैत जत्थनु पजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोहब्बत कियो कट कट की अंतर की जान भले बुरे की पीर पिछानता चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पिछानाए कट कट के पट पट की जाने जब उद कर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब अकर कर तो कब हूँ तुम मैं मिलती तरसम हूँ जे ते बदना श्रेष्ठ सब तारा आप अपनी बूझ उच्चार तुम सब ही तिरत निरालम जान भेद भेदे रे आलम निरंकार निर्विकार निरलंब आदि नीनानाद समता का मूल उच्चारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कृपाहन अनुमानत महामूड कश भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिंत न भेवे आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखाना जाय पसारा के बेद सजा प्रथम संसारा एक कै रूप अनूप स्वरूप रंग भैरा कई भूपांडज जेर जसे तजकीनी उत्पुज खान बहुर राच दीनी कहूँ फूल राजा हुआ बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी सृष्ट दिखाया चंपा जुगात स्वरूप सिम भव रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगर हो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करोड़न काता जे हस्त तसरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्या है ताके काल निकल नहीं है रक्षा हो ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो ताकि ताप तनक मैं हर हो सिद्ध कर मूसव हो दुष्याश सके ना कोई एक बार जंत मैं संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नार नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़कित मैं शरण तिहारी आपा दैले हो बारी सर्व ठावर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किल बिक सकल देह को हरता दोस्त दोखियन को शक करता श्री अस्तुजा पह दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काल मन बांशत फल पावा सोई दुख न तसा व्याप्त कोई अड़ेला सुनै गुंग जो जाहि सुरसना पावई सुनै मूढ़ चितलाए चतुरता आवई दुख दर्द भौ निक न तिन नरके रह हो जो याकी एक बार चौपई को कहे चौपई संबत सत्रह सहस पंड जय अर सहस फुंतीन कह जय भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीर सुतुद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया

एक कहे मत एक ना मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब भेद कहे हम एक ना जान्यो।

हर सेती मन रव रहया, सच्चे रहया समाए, नानक हों बलिहारी तिन कौ, जो चलन सतगुर पाए, महला तीजा बिन शब्द शुद्ध न होवई, जे अनेक करै सिगार, पिर की सार न जानई, दूजे पाए प्यार सार।

अखंड सत्य ब्रह्मांड सत्य तेरे लोह सत्य का सच्चा तेरे करण सर विचार सच्चा तेरा अमृत दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा

0: दुश्मनों अगले वजूब दुना खाए कसमे करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए वजू गवाई अगला मुंह खाना पाना खाए जिसदा दिता खाना तिस कही ऐसा बास नानक हुकम ना चले नाल खसम चले अरदास
1: जिन अंतर

जुगो हो जुग अटल चवर छतर तखत दे मालक सतगुरु हाजरा हजूर जहरा जहुर सर्ब कला भरपूर दसाहां पातशाहियां दी आत्मक जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी महाराज जी दी हजूरी गोद विच जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जीओ अमृत वेले दे सजे होए दीवाना दे अंदर सत्कार जो कीर्तनिया पासों आप जी ने आसा की वार दे कीर्तन बहुत ही अदब सत्कार सहित सरवण कीते ने अज अमृत वेले प्रकाशमान हुंदे आ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने पावन पवित्र मुख बाक हुक्मनामा जो बख्शिश कीता है सोरठ की वार दे विचों चौथे पातशाह धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी दी उचारण कीती हुई ये सोरठ की वार कहन दा भाव पौड़ियां धन गुरु रामदास महाराज जी दियां जो वार दा मूल रूप पौड़ियां हुंदियां ने इस करके सिरलेख गुरु रामदास महाराज जी दा इस दे नाल श्लोक जो धन गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह ने संपादना करन लगिया दर्ज किते ने ते अज दे पावन मुख बाक दे विच एक पौड़ी धन गुरु रामदास महाराज जी दी उचारण कीती हुई और उस दे नाल दो श्लोक धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी दे बख्शिश किते हुए ने सतगुरु ने फरमान किया श्लोक महला तीजा गुर सेवा ते सुख उपजै फिर दुख न लगे आए सतगुरु दी सेवा कीतियां मनुख नूं सुख दी प्राप्ति हुंदी है और फिर कदे कलेश नहीं हुंदा सतगुरु ने सेवा दी वड्याई और बहुत वड्डा अपना एक तजर्बा गुरु अमरदास महाराज जी दा जिन्हां ने आप तां करीबन सतगुरु दे चरणां दे विच 12 साल सेवा निभाई और उस उम्र दे विच जिस वेले लोक दुनिया दे अंदर उस अवस्था नूं बुढ़ापा कहिंदे ने जिस वेले शरीर थक जांदा है काम करन दे योग समर्थ नहीं रहिंदा।

दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ सलोक महला तीजा गुर सेवा ते सुखी उपजाय फिर

सुखमणि सुखमृत प्रभ नाम प्रभ के सिमरन गर्भ ना बसे प्रभ के सिमरन काल पर हरे प्रभ सिमरत कछ बिगन न लागे प्रभ के सिमरन पाओ ना व्यापे प्रभ का सिमरन साध के संग प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ के सिमरन जपता पूजा प्रभ के सिमरन तीर्थ इसनानी प्रभ के सिमरन होए सो भला से सिमर है जिन आप सिमराए प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ के सिमरन मन की मल जाए प्रभ जी वसे है साध की रसना प्रभ को सिमरे से तरवंते प्रभ को सिमरे से जन परवान प्रभ को सिमरे से बेमहताजे प्रभ को सिमरे से सुखवासी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला प्रभ को सिमरे से पर उपकारी प्रभ को सिमरे से मुख सहावे प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरे तिन आनंद कनेरे संत कृपा ते अनदन जाग प्रभ के सिमरन कार्ज पूरे प्रभ के सिमरन हर गुण वानी प्रभ के सिमरन निचल आसन प्रभ के सिमरन अनहा चुनकार सिमरे से जन जिनको प्रमया हर सिमरन कर भक्त प्रगटाए हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते हर सिमरन धारी सब धरना हर सिमरन कियो सगल आकारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दर्द दुख पंजना कट कट ना।

सरस्वती। मन मुहा नाम तेरे संग सहाय, तै केवल नाम संग तेरे चले। हर को नाम खिन माहे उधारी, हर को नाम कोट पाप पर हरे। नानक पावो सुख कनेरे, हर का नाम जपत होए सुखिया। हर का नाम जत तरे, हर का नाम जपता गावे। तै हर नाम संग होत सुहेला, नानक गुरमुख परम गत पाइए। नाम जपतै पार पराही, हर का नाम तत्काल उधारे। नाम जपत पावे विश्राम, हर का नाम कोट पाप खोवे। नानक पाइए साध के संग, हर का नाम उहा संग तोसा। हर का नाम संग उजियारा, हर का नाम तै नाल पछानू। तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम, तै नानक हर हर अमृत बरखै। संत जना कै मन विश्राम, हर के नाम उदरे जन कोट। हर हर औखद साधक मात, पार ब्रह्म जन कीनो दान। नानक जन के वर्त बबेकै, हर के नाम जन को तृप्त भुगत। हर नाम जपत का परे न भंग, हर के नाम जन शोभा पाई। हर नाम जपत कुछ नाहे वियोग, नानक पूजे हर हर देवा। हर तन जन को आप प्रभ देना, हर परता जन अवर न जानी। सुन समाध नाम रस माते, हर का भगत पगड़ नहीं छपे। नानक जन संग केते तरे, काम तेन हर हर गुण गाम। नाम सुनत दर्द दुख लथा, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत की सेवा नाम ते आइए, नाम तुल कुछ।

एक कर अनब कोट गवावै तो मुड़ा कह का करे ताको कीजे सर नमस्कारा सर्व सुख ताहू मन उठा सर्व थोक नानक तिन पाया अगणित खात पीत बरते आनंद उलास अज्ञानी मन रोस करे बहुर उसका विश्वास न होवे प्रभु की आज्ञा माने माथे नानक साहिब सदा दयाल सर पर होवत जान अनेत ओ बिनसे ओ मन पछतावे लपट रहो ते अंध अंधार ताको हाथ न आवे के कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या काम क्रोध विकराल रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या आपस ऊपर करत गमान मिथ्या हस्त पर दर्व को हिर है मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद मन पर लोभ लवावे मिथ्या बास लेत बेकारा सफल दे नानक हर हर नाम ले साच बिना कह होवत सुच्चा ताके ज्यों किरपन के निरार्थ दाम नानक ताके बल बल जाओ मन नहीं प्रीत मुखो गुंड लावत बाहर पेख न काहू पीन आवत जावत जन्मे मरे जो तुम पाने तिन प्रभ जाता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने आपे आप अब करत नवेरा उपाव स्यान सगल ते रहत आवेत लाए सेवक जिस कृपा करी निमख निमक

สัจจังมุขสัจจะสุเวเอกกสเบนโกเอนานเกลัชนบรมญาณีโฮเวอัฏฐปดี जैसे जल में कमल अलेप जैसे सुर सर्व को सोख जैसे राज रंग को लागे तुल पवान जो बस्ता को खोदे को चंदन लेप नानक जो पाव का सहज सुपाओ जैसे मैल न लागे जला जैसे तार ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान मन अपने है सबते नीचा नानक जिन पर आप करे आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पाया ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारो माहा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी अहम बुत्यागत ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी का सगला का

चार ब्रह्म लहंते तिन को पार ब्रह्म तिन लागा रंग नानक तेजन सदा धन धन कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई सदा सदा एक एकंकार प्रपे होए ब्रह्म हे समात आपे आप नानक प्रभ सोए तिन होवत आत्म प्रगास सदा निहारे को नेत्रे अमर भय सा सदी जीव है आत्म रस

0: सदा सदा नानक हर जाप इसके हाथ कहां विचार
1: वाहिगुरु
0: वाहिगुरु वाहिगुरु
1: वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
0: आपे एक आपे अनेक वाहिगुरु
1: वाहिगुरु वाहिगुरु
0: नानक सदही रहा समाए आपे रचिया सबके साथ
2: वाहिगुरु
0: सब वाहिगुरु वाहिगुरु जी
2: वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जी
0: वाहिगुरु
2: जी ठीक है वाहिगुरु वाहिगुरु
0: नानक कीमत कह न जाए गुर प्रसाद किने वखियानी ओट मदे किने विरले चीना हत सुंदर अपार अनूप घट कर सुनी स्वर पवित्र पुत्र पनी नानक मन प्रीत
2: वाहिगुरु।

0: अवतार संत के दुखन जमते नहीं छूटे, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन शोभा तेहीन, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए, सत्संग निंदक पी तरै, संतन के दुखन ला, संत के दुखन त्रिक जोन के रमाए, संत के दुखन सबको छलै, संत के दुखन नीच निचाए,
1: मॉनिटर
0: संत का निंदक टिकन न पाए, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को
1: सदा
0: भयोग, नानक संत पावे ता उसदा भी होए मोग, संत का दुखी किसे का नहीं
1: मित,
0: संत के दुखी को सब त्यागे, पहुंचे, संत का दुखी उजड़ पाइए,
1: वाहिगुरू
0: ज्यो सास बिना मृतक की लोथा, आपन बीज आपे ही खाहे, नानक संत पावेता लए उबार, ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, ज्यो पावक इंधन नहीं त्रापे, ज्यो बुआड़ तिन खेत माही दोहेला, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, नानक ज्योतिष पावे सोई थिया, संत के दुखी को दरघे मिले सजाए, संत का दुखी न मरे न जीवाइये, संत का दुखी उड़ चले निराशा,
1: जैसा
0: पावे तैसा कोई हुए,
1: ये तो ठीक बोल दा पोस्ट,
0: नानक जाने सच्चा सोए,
1: वाहिगुरू
0: सदा सदा तिसको नमस्कार, तिसे त्यागो सास गिरास,
1: वाहिगुरू
0: जैसा करे तैसा को थिया,
1: वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू
0: वाहिगुरू कृपा करे, वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू
1: वाहिगुरू
0: भागी नानक जन से सलोक, तजो सियानप सुरजनो सिमरो वाहिगुरू
1: वाहिगुरू आ कट लग गया
0: ना, आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए, अष्टपदी देवन को एक है भगवान, बौर न तृष्णा लागे आए, मन के किछ नाही हाथ, तिसका नावरंग कंठ परोए, नानक बिगन न लागे कोए, करमन मेरे सत व्यवहार, सेला कर लह जियो, सा संग बिनसे सब संग, मिटे पाप जपिए हर बिंद, हर दरगे नानक उजल मथा, सदा सदा हर के गुण गाहे, से तनवंत गणी संसार, सदा सदा जानो ते सुखी, एतुत कियो सोजी जाने, नानक तिने निरंजन जानिया, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, गृहस्थ में सोई निर्वाण, तिसकी कटगे जमकी फासा, नानक तिसे न लागे दुख, सो संत सुहेला नहीं डुलावे, ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਬੂਜਿਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ, ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ,
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
0: ਅਨੇਕ ਰਚਵ ਥਾਪ ਔਰ ਧਾਰਨ ਤਾਰਿਓ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ, ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਧਰੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਭਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵਡਭਾਗੇ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਪੁਰਖੋ ਉੱਤਮ ਕਰ ਮਾਨ,
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੇ ਹਰ ਸੰਗ,
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
0: ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੇ ਸੋਏ,
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
0: ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦਸਟਾਨਾ, ਓਏ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਣੇ ਆਪ,

बृहस्पति पापों ते कहते होता तब बैर ब्रो किस संकमात तब हरख शोको किसे व्यापत तब मोह कहाँ किस होवत परम नान करने हार न दूजा ता बंद मुक्त को किसको गनी ता नरक स्वर्ग को कौन अवतार तब से सख्त कहो कित ठाए ता कवन निर कवन कत डरे नानक ठाकर अगम पार तै जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन तब जमकी त्रास कहो हो किस होए तब चित्रगुप्त किस पूछज लेखा तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा तै बिन मैल कहो हो क्या तोता तै कौन कौ मान कौन अभिमान तै छल शक्त लगत कौ कीस तै किसे पूकम तृप्तावै नानक करते का नाही सुमार तवर कवन माए बा मित्र शत्रु पाई तै वेद कतेब कहाँ तब सगन अब सगन कहाँ बिचारे तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा नानक अपनी गत जानू आप से व्यापत माया तै गुण का नाही प्रवेश तै कौन किस आगे चिंता तै कौन कथे कौन सुनने हारा नानक आपस को आपे पहुँचा तह गुण में किन्नो विस्थार को नरक को स्वर्ग मिंछावत हुम्मे मोह परम पै पार अनेक प्रकार कियो बखियान खेल संकोचे तो नानक एक तै पसरे पसा संत परताप उनकी शोभा उन्हों बनी आपे रस भोगन निर्जोग जिस पावे तिस

0: दास अनित त्याग
1: मेरी प्रीत गोविंद सो
0: हर तन के
1: कटे
0: खेम कुशल सहज आनंद
1: मैं तो मोल महगी ले जी
0: नारायण

अनक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सोहेले

0: सी मलीन। तात्या तू एक एहो जिहा सिरजनहार है एडा कृपा निदान है एडा दयालु है अंदर मैल भी आ जाए तू वो भी धो देने एडा तू रहमतां दा सागर है एडा गुणा दा भरिया सागर है हम मूर्ख तुम चतुर सियाने असी ते बेसमझ हां सन ते कोई समझ नहीं क्योंकि गलतियां कौन करता है जीवन में जेड़ा बेसमझ होगा वो ही करेगा गलती भी वही मनुख करता है जिन्हें समझ ना आवे भाव कि जिन्हें गुरु नु समझिया नहीं बाणी नु समझिया नहीं गुरु ग्रंथ साहिब दे अकीदे नु समझिया नहीं ते जेड़ा गुरु नु समझ जाएगा वो जीवन में कदी भी कोई अवगण गलती कदी नहीं करेगा सात संगत बोलो श्री
1: वाहेगुरु
0: कदी नहीं तू सर्व कला का है माधो असी किस तरह दे हां आंखों का सारे

कहो मिलाए कड़ी भाव। पैसा भाई गुरदास जी आप एक वचन कहते हैं, थोड़ी तवज्जो बख्शनी ध्यान देना।

0: fácil, mano.
1: भाई साहब भाई नंद लाल कहते हैं, दिल अगर ताना बवर, ये फारसी लैंग्वेज है, दिल अगर ताना बवर अंदर किनार सियार हस चश्मुगल

जिसका यंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार, जो तू भाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण प्राता, करो बेनती पार ब्रह्म साब जाने, अपना किया आपे माने, आपे आप आप करतन बेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा, उपाव सियान पसगलते रहत, सब कश जाने आत्म की रहत, जिस भावे तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर या समाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी, सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अहंगमेव, नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी, जे प्रसाद सतहि अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे, जे प्रसाद सुगंध तन लावे, तिस को सिमरत परम गत पावै, जेह प्रसाद बसहे सुख मंदर, तिसहे त्याय सदा मन अंदर, जेह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरो तिस रसना, जेह प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याये त्यावन जोग, जेह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै, तिसहे त्याग कत अवर लुभावै, जेह प्रसाद सुख सेज सोई जै, मन आठ पहर ताका जस गावी जै, जेह प्रसाद तुझ सब कौ माने, मुख ताको जस रसन बखाने, जे प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी जपत दरगेह मान पावह, नानक पत सेती कर जावह, जे प्रसाद अरोग कंचन देही, लेव लावो तिस राम स्नेही, जय प्रसाद तेरा उला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत, जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके, मन सरनी पार ठाकुर प्रभ ताकै, जय प्रसाद तुझ को ना पहुँचै, मन सा सा सिमरो प्रभुचे, जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह, नानक ताकी भगत करे, जे प्रसाद या भूखण पहरी जै, मन ते सिमरत क्यों वालस की जै, जे प्रसाद सब हस्त असवारी, मन तिस प्रभ कौ कबहू ना बिसारी, जे प्रसाद बाग मिलख तना, राख परोए प्रभ अपने मना, जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सद तिसहे त्याई, तिसे त्याए जो एक अलख है, इहां उहां नानक तेरी रख है, जे प्रसाद करे पुन बहुदान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान, जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ कौ सास सास चितारी, जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा नूप, जे प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात, जे प्रसाद तेरी पत रहै, गुर प्रसाद नानक जस कहै, जे प्रसाद सुनहि करन नाद, जे प्रसाद पेखे बिस्माद, जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना, जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद संपूर्ण फल है, जे प्रसाद परमगत पावै, जे प्रसाद सुख सह समावे, ऐसा प्रभ त्याग बरकत लाग हो, गुर प्रसाद नानक मन जाग हो,

0: ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਤਿਸੇ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸਾਚ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਮਰਾਚ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ। ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ। ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋਏ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਆਪੋ ਕਛੂ ਨਾ ਕਿਨਹੁ ਲਇਆ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਲਗਹਿ ਹਰ ਨਾਥ, ਨਾਨਕਿਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹਾਥ। ਸਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੁਮੁਕਤਾ ਹੋਏ। ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੁਗਿਆਨ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤਨ ਬੇਰਾ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਜਤਨ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੇ ਕੌਣ ਪਰਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਮਾਹੀ ਸਮਾਨੀ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਆਵਹਿ ਬਸ ਪੰਚਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨ ਕਤੂ ਧਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾਪੁਨੀਤ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸ ਸਿਉ ਨਹੀਂ ਬੈਰ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹੋ ਤਾਪ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭ ਆਪ। ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਾਧ ਬਡਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣ ਆਈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬੂ ਧਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤੇ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚੈ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮੈਲ ਪਹੁੰਚੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਭ ਕੋਲੇ ਉਧਾਰੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ। ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਲਾਇਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਤੋਂ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਇਹਾ ਉਹਾ ਸੁਹੇਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ। ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਬਸੇ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੇ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਸਭ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜੇਤਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਤਾਬ ਖਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਾ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੇ ਇਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਲਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ। ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਖ, ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान जय जय राज रंक को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कह धीरजे एक ज्यों बसदा को खोदे को चंदन ले ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव नानक ज्यों पावका सह सुभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कह मनु प्रगा जैसे तरी उपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उच्च ते उच्चा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पय नानक जिन प्रभा करे ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरी नात्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब उपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अंग बोते आगत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ परता ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाईए ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कह सकल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कुण जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाय दे आखर ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का ठाकर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख वेदाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब उपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का तनी श्लोक और तारे जो अंतर नाम सरम पेखे भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक होवा पर सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन मैं प्रीत निरंजन दर्श पार तिरया रूप न पेखे नेतन साध की टहल संत संग हेत करना सुने काहू के निंदा सब ते जानी आपस को मंदा गुर प्रसाद बिखिया पर हरे मन की बासना मन ते टरे इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मैं देखो वैसा परस बै सुनो सो जस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए भिन्न कर्म करत हो वै नि कर्म तिस बैसनो का निर्मल धर्म काहू फल की शाह नहीं बाशे केवल भगत कीर्तन संग राचे मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़े अवरे नाम जपावे नानको बैसनो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल ते आगे दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सत्संग पापा मलख होवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन पर बोधे राम नाम आत्म मैं सोधै राम नाम सार रस पीवे उस पंडित कै उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो नावे वेद प्राण सिमरत बूझै मूल सूखम मैं जाने अस्थूल चौ वरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देस बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौ वरना में जपे को नाम जो जो जपै तिस की गत होए सत्संग पावै जन कोय कर कृपांतरे उर तारे पास प्रेत मुगत पाथर को तारै सर्व रोग काय औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत किते न पाइए धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाई तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सोदा दरगे परवान अपने दास को आप कृपा करें तिस दास को सब सोजी परें सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभाव की आज्ञा तमहितावे जीवन मुख सो कहावे तैसा हरक तैसा सोग सदानंद तै नहीं बेयोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृ तैसी बेखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक्यो पुरख कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर राखे तैसा तिन नाउ आपे करन करामन जो प्रपा वै सोई फन होग पसरे आप हो अनत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा परगास पार ब्रह्म करता बिना सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पै निहाल सलोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारा वार नानक रचना प्रभ रची बहु विधि अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार बिहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन परमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धारे कई कोट कब का विचारे कई कोट नमतन नाम ते आवे नानक करते कांत न पावे कई कोट पै अभिमानी कई कोट अंत ज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपेगातम निकोर कई कोट पर दर्भ को हिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रमाए कई कोट परदेश परमाए जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर प्यो पाए कई कोट पाथर बिरख ने पजाए कई कोट पवन पानी बै संतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सूर नखेतर कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर सगल समगरी अपने सूत धार नानक जिस जिस भावै तिस तिस निसतार कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत अरसास्त कई कोट किए रतन समंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेल स्वर्ण थीवे कई कोट जाके नरपे साच कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गाच साब ते नेरे सब हूं ते दूर नानक आप अलिपत रहिया परपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्म जीवे मरहे कई कोट बोजोनी फिर है कई कोट बैठती खाए कई कोट काले थक पाए कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय भाणा तै तै राखे नानक सब किश प्रभ कै हाथे कई कोट पय बैरागी राम नाम संग तिन लिवलागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्राप्या तिनको मिलियो प्रभ विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट काश ब्रह्मंड कई कोट होए अवतार कई जुगत कीनो विस्तार कई बार पसरियो पासार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट कीने बोपात प्राब ते होए प्राब माहे समात ता का अंत न जाने कोए आपे आप नानक प्राब सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत के बेते सदा निहारे कोने तरे कई कोट नाम रस पीवे अमर पय सत सद ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समावे अपने जन को सास सास समारे नानक होए परमेश्वर के प्यारे। सलोक करण कारण प्रभु कह दूसर नाही कोए, नानक तिस बलिहार ने जल थल मैयल सोए। अष्टपदी करण करावन करने जोग जो तिस पावै सोई होग, खिन मैं था प्यो था पणहारा, अंत नहीं किश पारा वारा। हुक्मे तारत रहावे हुक्मे उपजै हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार। कार कार देखै अपनी वडियाई, नानक सब मैं रहे आसमाई। प्रभ पावे मानुख गत पावै, प्रभ पावे ता पाथर त्रावै, प्रभ पावे बिन सास्ते राखै। प्रभ पावे ता हर गुण पाखे, प्रभ पावे ता पत ते उदारे। आप करै आपण विचारे, दोहां सिरिआं काप स्वामी, खेलै बिकसै अंतर जामी। जो पावे सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर नावे। कहूं मनुख ते क्या होए आवे, जो तिस पावै सोई करावै। इसके हाथ होए ता सब किश ले, जो तिस पावै सोई करे। अनजानत बिखिया मैं रचे, जे जानत आपणे आप बचे। भरमे भूला दै दिस धावे, निमख माए चार कुंड फिर आवै। कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक तीजन ना मिलै। खिन मह नीच कीट कौ राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज। जाका दृष्ट कछु न आवे, तिस तत्काल दै दिस प्रगटावै। जाको अपनी करै बख्शीस, ताका लेखा न गने जगदीस। जियो पिंड सब तिस की रास, घट घट पूरन ब्रह्म प्रगास। अपनी बणत आप बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई। इसका बल नाहीं इस हाथ, करन करामन सर्ब को नाथ। आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस पावै सोई फुन थियो। कब हो ऊच नीच मैं बसै, कब हो सोग हर खरंग हसै। कब हो निंद चिंद व्यवहार, कब हो यू बकाश पयाल। कब हो बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार। कब हो निरत करे बहु पात, कब हो सोए रहै दिन रात। कब हो महाक्रोध बिकराल, कब हो सर्ब की हो तरवाल। कब हो होए बह बड़ राजा, कब हो पिखारी नीच का साजा। कब हो अपकीरत में आवे, कब हो पला पला कहावै। ज्यों प्रभ राखे तिव ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कह। कब हो होए पंडित करे बखियान, कबहू मोन धारी लावे ध्यान। कबहू तट तीर्थ इशनान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान। कबहू कीट हस्त पतंग होए जियान, कजोन भरमे परमिया। नाना रूप ज्यों सुहागी दिखावै, ज्यों प्रभावै तिवे नचावै। जो तिस पावै सोई होए, नानक दूजा वरना कोए। कबहू साध संग तिह पावे, उस स्थान ते बहुर नावै। अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसहे पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल मैं जला ए खटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना। मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सद कुरबान। सलोक सुखी बसै मस्कीनी, आया अपनिवार तले। बड़े बड़े अहंकारियां, नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसके अंतर राज विमान, सो नरक पाती हो वसवान। जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहावे, जन्म मरै बहु जोन परमावे। तन भूमिका जो करे गुमान, सो मूर्खंदा ज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै, नानकी हां मुक्ता के सुख पावै। तन मनता हुए कर गरबावे, तृण समान का संग न जावै। बौलस कर मानुख ऊपर करे आस, पल पीतरता का हुए विनाश। सब ते आप जाने बलवंत, खिन मैं हुए जाए पसमंत। किसै ना बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी। गुर प्रसाद जां का मिटे अभिमान, सो जन नानक दरगे परवान। कोट कर्म करै हो तारे, श्रम पावै सगले बिरथारे। अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर फिर अवतार। अनक जतन कर आत्म नहीं दरवै हर दरगे को कैसे गवे आपस को जो भला कहावै तिसे भलाई निकट नावे सर्ब की रेन जा का मन होए कहु नानक ता की निर्मल सोए जा बलग जाने मुझते कछु होए ता विस कौ सुख नाही कोए जाबे जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मह फिरता जब तारी को बैरी मी तब लग निचल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै सहस खटे लख कोट धावै त्रिपत ना आवै माया पाछे पावै अनक भोग बिखिया के करै नह त्रिपत आवै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्ब सुख होए बडभागी किसे प्राप्त होए करन करामन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करामन करने हार इसके आत कहां विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए जो किश कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बूजा देखै करै बबी कापे कापे अनेक मरे न बिनसे आवे न जाए नानक साधी रिया समाए आप उपदेसे समझे आप आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो आपन विस्तार सब का शुष्काव करने हार उसते भिन कहो किश होए थान थन अंतर कै सोए अपने चल ताप करने हार कौत करे रंग अपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वखियानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखियानी पवित्र पवित्र पवित्र पनीत नाम जपे नानक मन प्रीत सलोक संत सरण जो जन परै सो जन उदर नहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखण यार जा कटै संत कै दुखण जमते नहीं छुटै संत कै दुखण सुख सब जाए संत कै दुखण नरक मैं पाए संत कै दुखण मत होए मलीन संत कै दुखण सोभा ते हीन संत के हते को रखे ना कोए संत कै दुखण थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे कराए नानक संत संग निंदक पीतरै संत के दुखण ते मुख पवै संतन कै दुखण काग ज्यों लवै संतन कै दुखण सर्प जोन पाए संत कै दुखण त्रिगत जोन किरमाए संतन कै दुखण तृष्णा मै जले संत कै दुखण सब कुशल है संत कै दुखण ते सब जाए संत कै दुखण नीच निचाए संत दुखी का नाऊ थाऊ को नाहे नानक संत पावे ताए पी गत पाहे संत का निंदक महत ताई संत का निंदक खिन टिकन न पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज ते हीन संत का निंदक दुखिया अर दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दुख मैं दुख नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दोखी किसे का नहीं मित संत के दोखी को उडान लाग गए संत के दोखी को सब त्याग गए संत का दोखी महाअंकारी संत का दोखी सदा बिकारी संत का दोखी जन्म मरे संत की दुखना सुख ते टरे संत के दोखी को नाही ठाओ नानक संत पावेता ले मिलाए संत का दोखी अद बीच ते टूटै संत का दोखी किते काज ना पहुँचै संत के दोखी को ध्यान परमाइए संत का दोखी उजड़ पाइए संत का दोखी अंतर ते थोथा जो सांस बिना मृतक की लोथा संत के दोखी की जड़ किश नाहे अपन बीज आपे ही खाहे संत के दोखी कवर न राखण हार नानक संत पावे ता ले उबार संत का दोखी उंबिल लाए ज्यो जल बिहुण मछली तड़फड़ाए संत का दोखी भूखा नहीं राजै ज्यों पाव किंदर नहीं त्रापै संत का दोखी छुटे अकेला ज्यों बवाड़ तिल खेत माहि दोहेला संत का दोखी धर्म तेरै संत का दोखी सद मिथया कहत किरत निंदक का तुर ही पया नानक जो तिस पावै सोई थया संत का दोखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दोखी को दरगह मिलै सजाए संत का दुखी सदा सहकाइय, संत का दुखी न मरे न जिवाइय, संत के दुखी के पुजे नासा, संत का दुखी उठ चले निरासा, संत के दुख न तृष्टै कोय, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया किरत न मेटे कोय, नानक जाने सच्चा सोए, साब काट तिस कियो करने हार, सदा सदा तिस को नमस्कार, प्रभ कियो स्तुत करो दिन रात, तिसे ते आवो सास ग्रास, सब कछु वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जितनु कृपा करे तिसे अपन नाम दे, बड़ भागी नानक जन से सलोक, तजहो सियानप सुरजनो सिमरो हर हर राय, का सर मन रखो नानक दुख परम पौ जाय, अष्टपदी मानुखी टेक बिरथी सब जान, देवन को एक भगवान जिसके दिए रहे अकाए, बहुर ना तृष्णा लागे आए, मारे राखे कुआ मानुक किशना ही हाथ, तिसका हुकम बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत ब्योहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लेह जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसै सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटहे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगहे नानक उजल मथा, बड़ पागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो कर है विचार, से तनवंत गणी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, तुत कियो सोजी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्हे निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपने आप सूजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सर्ब रोग त्यों हर जन रहत, अन दिन कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त मैं सोई निर्बान, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागै दुख, जिसको हर प्रमाण चित आवे, सो सन सोहेला नहीं डुलावे, जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवको किस ते डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्ज में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तरसा बूझिया, जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सूखम सोई असूल, न किस जन्मै न किस मरे, अपन चल ताप ही करे, आमन जामन दृष्ट अन दृष्ट, वाग्याकारी धारी साब श्रेष्ठ, आपे आप सगल में आप,
1: सगल संसार तनमंत, प्रभ की सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के से धूम सारण, आपे मेला कृपाल, गुरु का सबजा पै निहाल, उनकी सेवा सुई लागै, जिसनु कृपा करे बड़पागै, नाम जपत पावै विश्राम, नारंग तिन परखो उत्तम करमान, जो किश करै सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सह सबाए हुआ सो हुई करण, हार पछाणै सोई प्रभ का कर किया, जनमीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिते जित समाय समाय, वे सुख रंधान उनु मरे आए, आपस गुआ दीनो मान, नानक प्रभ जने को जान सलोका,